0: Now we have the conversation between Muni Behen, enacted by Sumiki, first year nutrition and dietetics, and Gandhi Ji, enacted by Mr. Balakrishnan. Stay tuned.
1: नमस्ते सलाम राम राम आप लोगों का गुड स्वागत है और आज अपन एक बहुत ही फेमस इंसान से मिलाने वाले हैं आपको मरीना बीच से सुना है इन्होंने छाती पे गोली खाई है लाठी लेके देश पूरा चले हैं और देश को आज़ादी भी दिलाई है पर अपन को ये कुछ बड़ा काम नहीं लगता पप्पू ने भी तो गोली खाई थी वो भी दो दो अरे जब चलने की फैसिलिटी थी वो चले आज तो रहने के लिए जगह नहीं लाठी लेके क्या खाक चलेंगे हाँ हाँ बुला रही हूँ बापू को नमस्ते बापू जी क्या हाल खाना वाना खाया आपने
2: नमस्ते हाँ भगवान की कृपा से कुछ लोगों के दिलों में जिंदा हूँ मैं क्यों बुलाया है मुझे यहाँ
1: मेरी आइडिया थोड़ी ना थी सबने कहा बापू महान है बापू को बुलाओ मेरी ओपिनियन कोई लेता है हाँ तो सुना है वो क्या बोलते है उसको हाँ अहिंसा और सत्याग्रह में विश्वास करते हो आप
2: हाँ बिल्कुल
1: कॉन्फिडेंट अरे बापू आजादी तो दिला दी लेकिन उसके बाद क्या हुआ एक दूसरे को मारने लगे अगर फुल प्रूफ होता तो लोगों के बीच सुपर हिट होता ना हर दिन थोड़ी ना फॉलो कर सकते हैं इसको
2: इंसान इतना मूर्ख है कि वो अपनी क्षमता को पहचानने से कतराता है हर दिन वो सत्य और अहिंसा की राह पर चलता है और उसे पता भी नहीं चलता एग्जाम में चीटिंग ना करना पिताजी की डांट चुपचाप सह लेना जब हम सत्य का उपयोग मौका देख कर सकते हैं तो उसे पूरी तरह से क्यों नहीं अपना सकते जब हमें अहिंसा से आजादी मिली तो आइडिया फुल प्रूफ ही है ना जब हम समय देखकर लड़ाई शुरू कर सकते हैं तो अहिंसा को समय क्यों नहीं दे सकते सब्र का फल मीठा होता है
1: अरे बापू सब्र करते करते देश ही नहीं बचेगा
2: अभी देश में क्या बचा है बेटी
1: आप वकील हो ना हिंदी से ही पता चलता है अच्छा अब तुम बापू हो तो इस क्वेश्चन का आंसर दो आप सुट्टा बोले तो सिगरेट पहचानते हो ना
2: जरूर ये सवाल था
1: अरे सब्र बापू अगर तुमको मैं सुट्टा छोड़ने का आइडिया देने को बोलूं तो तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा
2: हर सड़क पर जितने सिगरेट की दुकानें हैं
1: उसको बंद कर दो
2: नहीं उन्हें बेशक चलने का अधिकार है हर दिन एक इंसान हर दुकान से सारे सिगरेट खरीद कर उन्हें सबके सामने पानी में डाल दे
1: इससे सिर्फ सिगरेट गीला होगा कुछ चेंज नहीं होगा बापू और पूरे मैटर का लॉलीपॉप है
2: सत्याग्रह एक इंसान से शुरू होता है समय लेता है पर जरूर काम करता है जब हर दिन सिगरेट कोई पानी में डाले तो लोगों को जरूर पता चलेगा कि बात क्या है
1: आप ऐसा सोच रहे हो अरे पर दाल गली नहीं तो
2: गलेगी सब्र मुन्नी दाल जरूर गलेगी
1: नोट पे फोटो छप गई लेकिन आइडिया की छप्पी खत्म नहीं हुई अच्छा बापू इससे बचो अपुन इतने ऑटो वालों को देखा है जो एगमोर से नुंगम बाकम का 50 रुपया लेते हैं जब लेना सिर्फ 20 रुपया अपुन को पूछोगे तो दो चार लाफे लगाओ साले ट्रैक पे आ जाएंगे
2: कितनों को मारोगी और वापस मारने के लिए ज्यादा समय नहीं लगेगा अगर सभी चाहते हैं कि सबक सिखाना है तो दिमाग से काम लो लाफों या लातों की क्या जरूरत है
1: तुम फिर से मेरी आइडिया की वाट लगा रहे हो मामू
2: अगर हर वाहन चालक अपने काम पर जाने वाले या ऑटो इस्तेमाल करने वाले बंधुओं को
1: किसको?
2: बंधु दोस्तों को हर दिन तुम्हारे शब्दों में लिफ्ट दे सकते हैं तो ऑटो वालों को पैसा कमाने का मौका ही नहीं मिलेगा और उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा
1: अरे पर कोई लिफ्टेज नहीं दे तो प्लान चौपट
2: हो सकता है अगर दो मुट्ठी साथ हो जाए तो 2000 बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा
1: तुम्हारी बातें 200 केजी के बराबर है बापू पर इस कलयुग के टाइम में ये कहाँ चलेगी
2: अगर इंसान चाहे तो हर युग में ये बात अपनाई जा सकती है लोगों को जगाना तुम्हारा काम है

क्या बात है बापू, आज का डे फुल हो गया, लाइफ भी फुलिच हो गया। अपुन सोचता था कि तुम 40,000 अंग्रेजों की लाठी फालतू में खाए, अब पता चला तुम इतना सोचने के लिए कितना लाठी खाया होगा। अपुन तुमको रॉन्ग समझा। तो बहन लोग, आज के शो से तुमको हेल्प मिला होगा, ये मैं आशा करती हूँ। सलाम गांधी, जय हिंद।

उठे युग बोल उठा, तुम मौन बने युग मौन बना। कुछ कर्म तुम्हारे संचित कर, युग कर्म जगा युग धर्म तना। युग परिवर्तक, युग संस्थापक, युग संचालक हे युग आधार। युग निर्माता, युग मूर्ति, तुम्हें युग युग तक युग का नमस्कार। तुम युग युग की रूढ़ियां तोड़, रचते रहते नित नई सृष्टि। उठती नव जीवन की नींवें, ले नव चेतन की दिव्य दृष्टि। धर्माडंबर के कंडहर पर कर पद पहार कर धरा ध्वस्त। मानवता का पावन मंदिर निर्माण कर रहे सृजन व्यस्त। बढ़ते ही जाते दिग्विजय, गढ़ते तुम अपना राम राज। आत्माहुति के मनमाणिक से गढ़ते जननी का स्वर्ण ताज। तुम काल चक्र के रक्त सने दशनों को कर से पकड़ सुदृढ़। मानव को दानव के मुंह से ला रहे खींच बाहर बड़बड़। पिस्ती कराहती जगती के प्राणों में भरते अभेदान। अधमरे देखते हैं तुमको, किसने आकर ये किया त्राण। दृढ़ चरण सुदृढ़ कर सपुट से तुम काल चक्र की चाल रोक। नित महाकाल के छाती पर लिखते करना के पुण्य श्लोक।